0: This is the Thar Desert in Rajasthan. It's harsh, dry, and yet for generations, people have built their lives here.
1: हमारा तो यही घर है, हाँ ना? हमारे का तो बच्चा को यही जिंदगी बितानी है ना?
0: But something is changing, a new kind of gold rush. Not for oil or minerals, but for sunlight.
1: खेत की कटाई रोक लगाओ,
2: रोक करो, रोक करो,
3: पर्यावरण की रक्षा करो,
1: रक्षा करो, रक्षा करो.
0: Kishan Ram, known as Kishanji, is a village head. And today, he's leading a protest. Not against solar power, but against what it's doing to his land.
1: कोई दिक्कत को नहीं मारी प्लांट कोई विरोध को नहीं के भाई वो नहीं लगे भाई लाइट बिना तो लाइट भी जरूरी है आई कोई नहीं सौर ऊर्जा भी मतलब जरूरी है बाकी किसी शर्त पर मारा जोड़ पाइतन गोचर भूमि आगो और जकी चीज हमारी सेंस करती है जकी खत्म कर भी चीज माते बर्दाश्त को नहीं
0: As solar farms expand, the demand for land is getting closer to villages like his. But some villagers living right next to them still don't have electricity.
4: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है।
0: How did a place powered by the sun leave some people in the dark?

0: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है,
1: दूर जाके लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है।
2: In many drought-prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
0: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है, वो भी तीसा रहता है।
2: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
1: हमारे यहाँ एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए।
2: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ramdayal Chowdhury are seeing that firsthand.
1: ये प्रधान मंत्री कुसुम योजना है, इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं, छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है। मेरे पास 15 बीघा जमीन है, उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है।
0: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
1: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है। ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है, करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये। इनसे फायदा हमारे को होता है, ये मतलब बिजली नहीं लगती है, बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है, इनका एक बार पैसा लगा हमारे को।
0: Instead of monthly bills, it's a one-time investment, and over time, that has made a difference.
1: वो फायदा हुआ हमारे को। अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ। इनका कोई खर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
0: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
1: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है। ये हमारे पहले लाइट से चलता था, लाइट में हमारे को परेशानी ज्यादा होती थी। वो 6 घंटा लाइट देते थे, कभी कटौती कर देते थे, कभी 4 घंटा भी कर देते थे। अब हमारे को मतलब 14 घंटा, गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है। हमारे को डबल फायदा हो गया।
0: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.

0: As solar projects expand across Rajasthan, opportunities open up.
1: We are the solar panel manufacturing leaders in India. That's we are making solar panel TOPCon up to 630 watt panels.
0: While many panels today produce around 600 watts of power, newer high-efficiency models can reach 630 watts or more. On its own, the difference is small, but across an entire solar farm, it can power many more homes.
1: राजस्थान के इकोनॉमी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं बेसिकली तीन पॉइंट्स पे हम मतलब के राजस्थान की जीडीपी को इन्हेंस कर रहे हैं सेकंड वन इज हम मतलब के लॉजिस्टिक जो पार्ट है उसमें इन्हेंस कर रहे हैं एंड थर्ड वन इज मैन पावर जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसमें 90% की मैन पावर को राजस्थान की है जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और हम यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं लोकल
0: The company employs around 450 people directly, with another 250 working indirectly in areas such as logistics.
1: Solar 91 was one of the solar distributor, जिसके साथ हम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो basically उसको हम services, उसकी requirements की fulfill करना राजस्थान में रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा होने की वजह से एक टाइम पे अभिषेक खराब माना जाता था